काहु मंगना, सब किस तेरा तू करने हार, अंत नाही किस पारावार, दास अपने कहो दीजे दान, कबहू न विसरे नानक नाम, गौड़ी गुआर री महला पंजवा, अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाण पयागल पहारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगाह सुबा सीत, मन मेरे गहो हर

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेहे नानक नसै गौड़ी गुआर री महला पंजवां बहुत दर्ब कर मन ना आघन्ना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नाट नाटक आखारे गाया ता मह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईऐ कहो नानक वड भागी पाईऐ जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार। जो हलाहल सो पीवे बवरा, अमृत नाम जानै कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख चौरासी भ्रमता पेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करहै बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवा, तौ किरपा ते मार्ग पाई है। प्रभ किरपा ते नाम ते आई है, प्रभ किरपा ते बन

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मधे बसते अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जै। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे। कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया। अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह। कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवा गवाररी। रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब में है सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना। तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

भंडार, रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही त्याया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, विचार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माय, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

कर कर्म देख बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो परगास।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जां कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जांकी ज्योत जी परगास जांकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनाम।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवां चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहां सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार भी महला पंजवां कल युग मह मिले आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग भोग जलै न पाइए राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए

जिन प्रयोग परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी गुआरी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सचना।

अमोल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवां डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कौ बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवां जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम तां का भागी रहाउ जा कहो रस हर रस है आयु सो अन रस नाही लपटायु जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जा का सब किस तां का होए नानक तां को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवां जा कै दुख सुख सम कर जापै तां को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ जा कै अचिंत वसै।

माया वड्याई सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाहीं छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करन हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्स पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम सुमारे कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत मन

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ इक सरण आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ

ऐल करत जन सूहै ताकौ माया अगन ना पूहै मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गा।

जात पूरा गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कार हो। सास सास प्रभ मनह संभाले, सो तन संचो हो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आथाउ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाउ रहाउ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारत चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवा तै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावै सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाव। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कटा के अंत।

मुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जप हो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहा, नाम बिना नाही मुख भाग, परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जान की

नानक जा कौ नदर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ दलभ देह होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग पै परम मटाया जत कत देखो तत रहया समाए नानक दास हर की सरनाए गौड़ी महला पंजवा गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ जप जप जीवा सत गुर नाओ पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ चरण कमल हृदय उरतारी मन तन धन गुर प्राण आधारी सफल जन्म होए परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान संत धूर पाइए वडभागी नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी गौड़ी महला पंजवा करै दुख कर्म दिखावै होर राम की दरगाह बांधा चोर राम रमै सोई रामाणा जल थल महियल एक समाणा रहाउ अंतर बेख मुख अमृत सुनावै जमपुर बाता चोटा खावै अनक पड़दे मह कमावै विकार खिन मह प्रगट होवे संसार अंतर साच नाम रस राता नानक तिस किरपाल बिदाता गौड़ी महला पंजवा राम रंग कदे उतर ना जाए गुरपूरा जिस दे बुझाए हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ संतह संग बैस गुण गाए तां का रंग न उतरै जाए बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया गुर रंगे से पहे निहाल कहो नानक गुर पहे है दयाल गौड़ी महला पंजवा सिमरत स्वामी किल विकनासे सुख सहज आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ साध संग कस पौ ना परांति गुण गोपाल गाय है दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस पीवह जन नीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का भागा हर धन को वापारी पूरा

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज

ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा रोग।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वडभागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोई, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। भ्रम बिनसे गाए गुणीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे

दीन कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरन ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी मेल लए पूर्ण वड भागी रहाउ परता पेख बिगसै ज्यो नारी त्यों हर जन जीवै नाम चितारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर सिउं राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल सिउं लागू मना।

रसायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाओ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप।

किल विख खोए, सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रविया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ताकि पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

दहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू ना जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराद गौड़ी महला पंजवां गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याऊ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाव आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वध ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवां महजर झूठा की तुने।

दरगाह बोलै कूड़, सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाया आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवां, जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी, रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मंजाई, अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही, सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल, मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जाप।

कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाओ, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यों मन माने, अगाध बोध हर अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रतपार है बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह परापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम दीना नाथ सुनहु अरदास कर गै लेहु नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाउ सेवा करूं दास दासन की अनक पांत तिस करूं निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुह मार्ग दे बताई रहाउ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाउ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाउ जत कत देखो तत तत तुम ही

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तह तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरह नारे।

बसन सुहेला एह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला।

कृपा राखु राखन हारी। खेद कर है और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी। कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवां, ओ अबनासी राया। निरपो संग तुम्हारे बस्ते,

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवद जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए इकतरा एक सकै वस किए दस बैरागने आग्या कारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला।

मन की आसा गुर भेटियो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोह को हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोह को सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोह को अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मन है प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अनपै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवां पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख योही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावे तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटै खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन तर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने

गोविंद लोक नहीं जन्म मरह, बल बुद्ध सियान पहु मैं रही, हर साध सरन नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाइय, नीत नीत हर सेवी, सास सास हर त्याई रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भौ गया, गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसरे राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जा को गुरमुख हृदय बुद्ध, ता कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी, करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर धन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाओ, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, कृपा निध मै

हरे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा सरन परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरै इस मीठी ते एहो मन हो रै रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरै रैण अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरै प्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरै कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लई गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाव एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दीसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो हुए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिय रहाव जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइये जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइये मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूट है सर्व सुखा सुख पाइये सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइये नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की गुरते पाइये पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों।

चेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए। जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान भरे, पोट डार गुर पूरा मिलिया तो नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा, पावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रास, मान गोबिंद आगियो रहाओ। मान अभमान दो समानी, मस्तक डार गुर पागियो। संपत हरख ना आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टा गियो। निरपौ भये संत भ्रम डारियो, पूर्ण सर्वागियो। जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो ना लागियो। साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड़ तुहारी परियो।

गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरै तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो भेटे हो तो बिसरी तात पराई।

तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माध महला पंजवा, सुन सुन साजन।

मन जीवै भाई जीओ, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जीओ, सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जीओ, प्रभ को सद बल जाई जीओ, एहो निधान जपै बड़ भागी जीओ, नाम निरंजन ए

जोर तुम्हारा सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया तद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजार पसारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौरी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिय पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर नेड़ ना आवई

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महल्ला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मग्न रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो, एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधु इहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते फिर न रहाई रहाओ। कठिन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई।

तौ सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमूलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेह कट राम समावै। गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो एह बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राखै आप वडियाई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न काज होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाय गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाऊ अदिष्ट दिसै ता कहया जाई बिन देखे कहना बिथा जाई गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल बकारी हार परोए एक बिना झूठ।

0: जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ नाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचे शब्द दरनी साने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

सुख पावे भरम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केश चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाक पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोल शिंगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो ताज कुलह सिर शत्र बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो खान मनुक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हौमै ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया।

परपंच ब्याद क्या गै कवरी, भाई मिलै सच साचै साचरी, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मन धोई, राव ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगल जगत पर जार है, सो उभरै गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे घाटे घाट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हौं मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुत आवह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावह, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया,

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजी पत पाईए अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईए नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आपको, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे।

इह संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख।

अहंकारी आप ना चीन बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन बिद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटह मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेतह उपावन हारा, मर जमह फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जा हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगट।

मनो विसारिय हर रखिय हृदय धार नाम मिले पत पाईय नाम मने सुख होय सतगुर ते नाम पाईय कर्म मिले प्रभ सोय सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हउमै मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावै तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए मन करहला सतगुर पुरख

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए घर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सत गुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग।

महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहु मन मह करत गुमाना तब एहु बावर फिरत बेगाना। जब एहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना। सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी। रहाओ जब किसको एहु जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा। मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई। जब इने अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किस कर्मा ने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया। जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी। जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है। दूर ना नेरे सब कह संगा सच सलाहन नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा। तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदै रविया सोए। मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे। जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे। जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साद। जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास। जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा। जास जपत मुश्किल कशु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने। जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे। पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास। ताकै आत्मै हुई प्रगास।

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग परे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किस मैला इस मारी बिन सब किस जौला जाको भये कृपाल कृपा निद किस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरे ता सबको मीत हर स्यो जुरे ता निश्चल चीत हर स्यो जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरै संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जाकै काम उतरै सब भूख, जाकै काम ना जो है दूत। जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवै तू।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनी।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो जिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथक थारिया, हर दरगाह सोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल तरिय कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहो कोट मदे किने गुरमुख लहो, हर संतन कर नमो नमो नौ निध पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहो, दुख अंधेरा करते मिटो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परेओ जन नानक गुरमुख जगत तरेओ, महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समर्थ संत उठायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंद न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझह समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करहु।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाई जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाई हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा धन मिले मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे धरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती ता फिर मुक्ति सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारे गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद न आवै जियो कापर तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाई सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाई गुर शब्द मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाई प्यारी। रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे। अन

दिया दिन राती दुबदा मार निवारी। नानक सच मिली सुहागण गुर कै हेत अपारी। आव हो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारी। कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिंगारी। सच शब्द सिंगारी हमे मारे गुरमुख कार्ज सवारी। जुग जुग एको सत्या सोई बूझै गुर बिचारी। मनमुख काम व्यापी मोहि संतापी किस आगे जाहि पुकारी। नानक मनमुख थाउ न पाई बिन गुर अत प्यारी। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिया जियो आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा कामण कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है। सतगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रह दिन राती अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा। माया सार सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरियै गुरमुख भगत प्राप्त होवै। जीवत्या इयों मरियै जिन मह राम नाम किलविख काटे। पये पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा। कंचन पये मनूरा स्त्री पुरख काम व्यापे जियो। राम नाम की बिद नहीं जानी मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो। डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारी जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे नानक नाम बसे घट अंतर गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वापारा। राम नाम वापारा अगम अपारा गुरमति धन पाइए। सेवा सुत भगत एह साची विचो आप गवाइए। हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए। नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे। आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

छोड परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभु दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझे अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्स निमाणिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिली है प्रभु दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दै आर, ठाकुर सदा कीर्तन गावहे। जह साध संत इकत्तर होवहे, तहां तुझे त्यावहे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप, चाल निराली। मोहन तू मान है एक जी, अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहिया अभमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुद नो धन कहिया, तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता, गिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर,
सर्व कला जिन तारी, करुणा मैं समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी, प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू, शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू, रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी, गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला, विसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किस है, काल कंटक लोभ मोह नास है, जी जा के प्रभ बस है, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला, गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उदम करेहा, मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मंत, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई, एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरण पै नरक निवारे, पनीत करे तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत हुए, गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिटे है ब्रह्म नास है, मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन, पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां श्लोक, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आप है किया कराया, आप है करना जोग, नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा

एक बखाननो, नानक एक अनेक पौड़ी। ओंगुर मुख कियो अकारा, एक है सूत परोवन हारा। पिन पिन त्रै गुण विस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू पांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई है, तेह संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक तां कै सद बलिहारा। सलोक धन धन कहां पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बाछ सुरजना आछ, अत प्रिय प्रीत साध रज राच। धंदे कहां व्यापहता हूं, जो एक शाद अनकत ना।

नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोई कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जां कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एउ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो।

रंगी आवत सोजन ना महराता जां को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन ना आया नानक हर कै दर्श सुमाया। सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा।

या भवजल करना यया जन्म न आवे सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्म न हारी है गुरपुरे की टेक नानक तेह सुख पाया जान कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपुरा उपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीआ ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी अनद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह अनद स्यों जा

नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गगा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होवना जत।

नाम तत् कलमह पुनः चरना, काल काल अनक पछतावह, बिन हर भगत कहां थित पावह, कोल महारस अमृत तेह पिया, नानक हर गुर जा को दिया सलोक, नान काले सब दिवस सास, नह बदन कटन तिल सार, जीवन लो रह परम मोहो, नानक तेहु गुवार पौड़ी, गंगा अंगरा सह काल तेह, जो साकत प्रभ कीन, अनक जोन जन्मह मरह, आत्म राम ना कीन, ज्ञान ध्यान ताहू को आय, कर कृपा जिह आप दुआई, गणती गणी नहीं को छूट, काची गागर सर पर फूट, सो जीवत जिह जीवत जपया, प्रगट पय नानक नह छपया सलोक, चित चितमो चरनार बिंद, ऊंद कवल बिग शांत, प्रगट पय आप गोबिंद, नानक संत मतांत पौड़ी, चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन उवा दिन संजोग सुभागा, चार कुंट दह दिस भ्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो, चार बचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ, चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा, सलोक छाती सीतल मन सुखी,

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोन जुल्म फूल है कनो, काची दे विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी, जज्जा जाना हो कछ हुआ, बांधियो ज्यो ननी भ्रम सुआ, जो जाना हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाना मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हों मैं मारी, नानक ता को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध, कारहा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे अपाद पौड़ी, चज्जा चूरन मिटे तुमारू, राम नाम स्यो कर व्यवहारू, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बीया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी, जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एहेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग, ज्ञान तो सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न, अंधकूप ते तेह कढ़ो, जेह होवो सो परसन, ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक ते उस्तत करो, न्याहू कियो संयोग। सलोक टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरे, गुण निध गोविंद राय पौड़ी, टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोय, मन फन मुख ही है बसे, जो चाहो सो होए, टहल मैल ताको मिले, जाको साध कृपाल, साधु संगत तौ बसे, जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन, बिन नावे सुख नाहि, तलह जाम के दूत ते, जो साधु संग समाहे, बार बार जाओ संत सदके, नानक पाप बनासे कदके। सलोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन पौड़ी, ठठा मनुआ था है नाही, जो सगल त्याग एकै लपटाई, ठहक ठहक माया संग मुए, वाकै कुसल न कतहू हुए, ठांड परी संत है संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया, ठाकुर अपने जो जन पाया, नानक वा का मन सीतलाया। सलोक डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ पौड़ी, डड्डा डेरा एहो नहीं, जह डेरा तह जान, वा डेरा का संयम, गुर कै शब्द पछान, या डेरा को श्रम कर कल, जाका तसु नहीं संग चल, वा डेरा की सो मित जान, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान, डेरा निश्चल सच साध संग पाया, नानक ते जन नह डुलाया। सलोक ताहन लागे धर्म राय, किन्ह न काल्यो बंद, नानक उबरे जप हरी, साध संग संबंध पौड़ी, टड्डा ढूंढत कह फिरो, ढूंढन या मन माहे, संग तुहारे प्रभ बसे, बन बन कहां फराहे, तेरी ताहो साध संग, हम बुद बिकराल,
सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए टहत टहत अब कह परे साध जना सरनाई दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी आत्म जीत कोए हों मैं अंस्यो लर मरे सो सोभा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेह सूर तन वेस ना को जाने आपनु एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करै एउ कर्म कमाए हुक्मै बूजै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम भउ काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निद गोबिंद राय फल पावहै मन बांछते तपत तुहारी जाए त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावहै मत हुई परगास महली पावहै ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करो माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करो थाक पर हो गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पाव हो गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुट्टे तेरी बाकी रण दर्ग है तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

सर्वतर में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर ना करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की डाड़ मिटत बिन साही, अड़ाड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पहे,

रोखिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता।

उगत सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी सस्सा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

है से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमर है से बेमोहताजे, प्रभ को सिमर है से सर्व के राजे, प्रभ को सिमर है से सुखवासी, प्रभ को सिमर है सदा अविनाशी।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नान

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सोगनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट सा

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धावह मिथ्या

जाय। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेसै

रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

खानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही निव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जिह प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो

की जत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाऊ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगहै हर नाथ नानक इनकै

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्णै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहु धावै, साध संग अस्थित मन पावै।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगु

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञान

लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अभमहनी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अबनास, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग जोत पावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

प्रभ भावै बिन सास्ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पतत उधारै, आप करै आपन बीचारै, दोहां सिरियां का आप सुहामी, खेलै बिगसै अंतर जामी।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मित गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै। तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै, नानक इहा मुक्त आग्या सुख पावै। धनवंता हुए कर गरबावै, त्रिण समान कस संग ना।

हनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, हनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगाह कहो कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मह किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी तिसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करने हार इसके हाथ का।

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत

अष्टपदे संत कै दुख में आर जा घटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख भवै।

ज्ञान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार संत का दुखी इउं बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै।

नानक जो तिस पाव है सोई इठिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कै भगवान जिस कै दी रह अघाय बहुर न किछ न लाग आय मार है राख है इको आप मानुख कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनो पेखो ठाकुर का रंग

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओह सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया।

नह किछ मरै आपन चलते आप ही करै आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाचो धूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे।

के पाए, सब घट इसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण।

मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन।

तांकी गत मित खोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै। प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै। पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप। तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत। तिसके करतब बिरथे जात, मारै ना राखै अवर ना कोए। सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करहै रे प्राणी। जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपियै। ई अमृत इह मन तन तृपियै, नाम रतन जिन गुरमुख पाया। तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

0: नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाई आत्म परगास तित कर जाए बसै अबनासी कहो नानक काटी जम फासी
1: तत विचार कह जन साचा
0: जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भये एक अराध परासत गए।

आया पड़या तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग। परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी। जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे घर ना भानै। सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै।

पुरुख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमख हर के गुण गाय अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपने आप ही।

नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आपरतियो प्रपंच अकार, तेहों गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई

ज्ञान अनक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसर पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निर्जोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल है।

एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जानत सुभावे तां सृष्टि अपाई।

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए।

किने कछ करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकी गत मित कही ना जाए दूसर हुए ता सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक इहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मलाए नहीं प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआउ जन कै संग चित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक।

आओ हस्तपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदा

पर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

ज्ञान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जो

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय, गोविंद जस गाय हर नीत।

नानक संत निर्मल भये जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघार नीच हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाय जिन किए तिसह न जाननी चित वह।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै दुख।

बिनस अमृतरस रंग रत्ती निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिऐ नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ।

जाहिर साध संग लिवलाई खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिवलाई पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोबिंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन

मन मह चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाइए नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइए सलोक एको एक बखानिए बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद ना जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई।

हूं मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, तरन गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब सियों, गुण गोबिंद।

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझी सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल। गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोई एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है।

लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याएंगी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाह दे, हम मैं ममतावाद, जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिन्नी तू एक मन सच त्याया, तिनका सब दुख गवाया।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किश गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी। सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देश हो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन

जिन्नी सतगुर पुरख त्याया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चट्टिया मनमुख होरे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मनमुखा दै सिर जोरा अमर है नित देव है भला जोरा दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापेक सुध नर से जोरा पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चले सो सत पुरख भल भला जोरा पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याई दे जिन सतगुर मिली है सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे।

सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट वकार झूठ, वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले, सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले, जिन्ना सतगुर का

0: अनहार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करतै आप पचाया जन नानक गुण बोलै करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चै पिछों दे आख्या कम ना आवै अद विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अपिहो पीवै शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुख है नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवै सो नफरै हाथ आवै अणहोंदी कित्थों पाए जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगिया सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी।
1: नानक भी चार है संत जन चार वेद कहंदे
0: भगत मुख है ते बोल दे से वचन हवंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खहंदे ओए लोचने ओना गुणे नू ओए अहंकार सुनंदे ओए विचारे क्या करहें जां भाग धुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करहें निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहेब सतगुरु कै वल है तां झक झक मरे सब लोकाई निंदका के मुह काले करे हर करतै आप वधाई ज्यों ज्यों निंदक निंद करहें त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई।

रखै, हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया, नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया, क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर विचारी, सब पाप जगतै का तिन सिर लया, ओस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया, जे सोइने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर हल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, ता पिछले औगण बख्श लया, जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किल विक पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान, उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

जो करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओहो ढोया कूक पकार को ना सुने ओहो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओहो तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमे कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल न आवे लाहा हर भावे सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई बिछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लए जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लड्डो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाइए लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो उए मारे सिरजन हारे जिसका एहो खेल सोई कर वेखै जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर तारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखण हारा हर आप है सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया एहे गल होवै हर दरगाह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुतिया जिन्नी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग मह जानिए है जो गुरमुख सच रवे हों बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोलै सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाईए नाम अपार भौजल डुबदियां कढ़ लए।

बहु बिदरंग सुभाय सतगुर सीती मन रत्ता रखिया बणत बनाई जिहवा सलाहे न रजई हर प्रीतम चित लाई नानक नावे की मन भुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वडियाईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया।

जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किश जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगै खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवै। क्यों कर दरगाह सीजै।

फल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसमल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए, दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हथ ना आवई, फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुरु भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

नार पराइया लोके अंदर ठाणी सन्नी देन विखम थाए मिठा मद माणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अज राइल फरेसता तिन पीड़े कहानी सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए पौड़ी पंजवा नारायण लया ना ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखे सलोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम महला पंजवा अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप भलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखोट सब अंदेसे मिट गए जम का भो छोट काम क्रोध बुरे आईया।

मित्र तू दुख सबाया लाथ महला पंजवा खुदया वंत न जानी लाज कुबोल नानक मांगे नाम हर कर।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावण।

स्थान तनंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी नानक।

हठे पैर पौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जां चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदै नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करनी जम कै पंथ ना पाई है।

मन अंदर धरनी सलोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखा का होए नास नानक नाम अरादै कारज आवै रास महला पंजवां जिस सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी।

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे है सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सफाए अन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाए सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाए। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाए। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याए। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया, जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से वड भागे, नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे, नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुनै सो उदरै मित्ता हर जस लिखै लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़

जगत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। गेंद राख जो तरिय पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद।

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दू मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहा ही जान जान सब कह तहा ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समा

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर साम

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुपाए मेरा मन मानिया रहाओ, ब्रह्म कत कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी, गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया, अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

जब लग रात तब लग नहीं ने हो रहाओ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन ग्रह।

इनकै सदबले हार है जाऊं, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे रहाउ, जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझ ले तारू खिचहता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

आवे सुर सुख हमहु ना मांगिया पावे बिख्या अजहु सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा। गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ। साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

सोरठ पी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

आऊ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर की

विद्या अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फोन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैन हो सूतक बैन हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन ना होई गौड़ी।

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेहे निंद है जेहे गंगा आनी बैठत उठत कुटल।

कहियो ना मान है आप गए और नहु खो वह आग लगाए मंदिर में सो वह अवर्ण हस्त आप है कानी तिनको देख कबीर लजानी राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न मान को मुए श्राद कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिलै सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारास प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी

सागर तरन कहो मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कछ आहे ना मोरा तन धन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ इस माटी मह पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जां तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तौ जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है दरिया ना नरक निवास होना है सो होई है मन है ना की जय आस रमैया गुण गाई है जाते पाईया परम निदान रहाओ क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी है भाओ भगत भगवान संपै देख ना हरखी है विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है बिद ने रतिया सो होए कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

करै उधार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाऊ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मूरी प्राणा न रहाऊ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विख रोग पै बंधन भागी मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एक है एक समानाना कह कबीर गुर पेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कछ कछ पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खक्का एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

ना जाई अगह गह गह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई ता घट माही घाट जो पावा सो घट छाड अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम सियानप एह चचा रचत चित्र है भारी तज चित्रै चेतो चितकारी चित्र बचित्र एह अवचेरा तज चित्रै चित्राख चितेरा छछा एह शत्रपत पासा छक के ना रहो छाड के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे छाड कत आप बंधावा जज्जा जो तन

बसेरा, अर्दह उर्दह मंज बसेरा, अर्दह चाड़ उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

है बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान भरोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे

जियो इहो मन पंच तत् को जियो इहो मन ले जो उन मन रह तो तीन लोक की बातें कह जैया जो जान तो दुर्मत हन कर बस काया गाँव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अंत न जाए पर

जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राउ खखा खोज परे जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा सस्सा सो सह सेज सवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो

खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिछरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सुअन पैर है। पंडित लोग कहो व्यवहार।

छठ खट चक्कर शहूं दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतन।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माही, हैनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े, अन दिन आप आप स्यो लड़े, सुरखी पांचो राखे सबे, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे, थावर थिर कर राखे सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल ना लाभे जान।

जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गनका बिन रूप कुबजा, ब्याज अजामल तारियले, कर्ण बदक जन तेउ मुक्त पय, हौ बाल बाल जिन राम कहे, दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन कौराज दिए।

जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिखिया बमोहिया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोसो को न कह समझाय, जाते आवागमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर्व होए वो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह।

पड़े रिथीसुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो रत

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी।

पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई केवल।

करे गुर प्रसाद वस्से मन आई दुख अनेरा विचों जाय साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का भाव।

कही है, सर्व निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ, मन की मत मता गल मता, जो किस बोलिया सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन धोए साखी पास, जैसा तू करहे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुझे आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का इहो धन माल, जे को बूजै इहो विचार, आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहु मिलिया ता जानिया तेहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारी पूर्ण कार्ज ना हुई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाव सतगुर सेव पाए निज थाव मन चूरे खत दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाम।

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

खेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देहे जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन हुए थाऊ जा तुद भावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर है दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखान है वेद। अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए। साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी। तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान। गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला। काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई। इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ। सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी साजनी के हौ चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई। ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई। आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई। तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा। नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किस लेवहो। जो उपजै सो अलख अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई। गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवे। नानक राम नाम मन भावे, आसा महला पहला चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो आगै। रहाउ आस नरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता काया भोगी। दया दिगंबर देहे बिचारी, आप मरै अवरा नह मारी।

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवै ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाज है लख आव है लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहनस हृदय जी वसे नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाए।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू नखूटस नाहीं आसा घर चौथा महला पहला।

जाऊं, धर कर महला हस्ती घोड़े, छोड़ वलायत देश गए, पीर पे कांबर सालक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमण लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश पए, खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासी, थिर ना रह जैसे भवह उदासी, मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह, लोभी कपटी पापी पाखंडी, माया अधिक लगे रहाऊ, फूल माला गल पहरूंगी हारू, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू, पंच सखी हम एक पतारू, पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू, पंच सखी मिल रु

वह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू, जो किस करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावू। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाऊ, शिव नगरी मह आसन बैसो। कल्प त्यागी बादं सिंही शब्द सदा धुन सोहै, एनस पूरै नादं

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का वापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै खसमै सा पुरसाई रतन बगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाउ तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाणी मर मर जीवै तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै शब्द सच्चै बैराग खट दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत होए साचा आप।

कोई गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

साचै शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं दर साचै साचे गुण गाऊं आपे देवै सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊंचा होए गुरमुख शब्द बखाणे कोए विणनावै दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिलै सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाउ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहे।

आई गुर प्रसाद वसे मन आई गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारन हार हासा महला तीजा दूजै पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरता जन्म गवाया सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाई, संत संगत मिल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हो मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशी कूड़ा करे व्यापार, बिन राशी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गुआ।

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावे खसमे का महल कदे ना पावे दूजह लगी भरम पलावे ममता भादा आवे जावे दुहागनी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हरदावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाय। गुर कै भै साचै साच समाय। बिन गुर पूरे भगत न होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा आनंद हो।

जाय अवर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार। आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ। मोह गमान गुर शब्द जलाए।

समावै सत संगत मेल सब सोझी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे ना आवै जाए पूरे गुर ते साच समाए।

ना जाई, पूरे सतगुर दित्ती वड़ियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई, जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई, सच बाणी गुर शब्द सुनाई, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, हासा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सोजी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणै सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंद गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करह से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। काल युग मह तड़े पांच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिने आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख परगासा नाम बिना मैं धर नहीं काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ नाम मैं सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवे हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई हल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर तुट

को वर्तै तिस आज्ञा हम आदेश रहाउ। गाव है राग भांत बहु बोल है, यह मनुआ खेलै खेल। जो वह कूप सिंचन को बसधा, उठ बैल गए चर बेल। काया नगर मह कर्म हर बोव हो, हर जामे हरिया खेत। मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो, हर सिंचो हो गुरमत जेत। जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल। जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई कौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुरु राखे दे।

पन्नुआ परदेश झाग सौदे कहो आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन एहु मन लपटानी साहा व्यापारी द्वारे आए वक्र काढ हो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान साध कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे

नानक लद्दा मन तन मंजा आसा महला पंजवा पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण

रहना, मोआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाव, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घरवासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुर मिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हुई।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहो जुगह समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया हसा महला पंजवा हर सेवा मह परम निदान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सखाई दुख सुख सिमरी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाउ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाउ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार।

गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ, दिन ते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे सोए रहे अभागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गाइय नीत, मुख उजल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

पंजवां हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय आठ सठ मज्जन संत पुराय सब मैं जानु करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर।

ना किहि, जिस प्राप्त तिस ही देह, नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साद, एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे, आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह, ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

सदा सदाय आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावह, किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म, सतगुर भेटे।

आद संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अब मानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत। सदा सदा हर त्याय रहाओ महा विचित्र सुंदर अखाड़ी रण।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना पा।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को

पाया। कूड़ कपट बंच निम्न आदा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रवाब पखावज ताल कुंगुरू। अनहद शब्द

सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

ब्राह्मणी सुदीते श्रेष्ठाई रे पाताले आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे घर की बिलाई अवर सखाई।

मन की होर किस पह आख सुनाइय विण नावै सब जग बोराया नाम मिले सुख पाइय।

मुक्त पाए अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काड लिए निरपव पाए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

कह जिस जानी ऊपर तेरी कृपा तिसको बिपना को भाख है ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पाव तरलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बिचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुरु सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी कहो जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवे। सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई।

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। हासा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देहे जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिना

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखो एक ओही

मुख हर हर बोले, सूजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोहो सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिल बे की लालसा, ताते आलस कहां करो री रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे,

पंजवा ठाकर सिंह जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ, जाका तनी अगम गुसाई।

आज टुकाई गिरत कूप मह खाए मठाई सोचत साचत रहन बयानी अनकरंग माया के चितवत कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया काल कै फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड निश्चल कर।

मेला उनकै संग हम तुम संग मेल उनकै संग तुम सब को लोरै ओस बिना को मुख नहीं जोरै ते बैरागी कहां समाए तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ उनकै संग तू ग्रह महिमा हर उनकै संग तू होई है जाहर उनकै संग तू रखी पपोल ओस बिना तू छुटकी रोल उनकै संग तेरा मान महत

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

सब हुमा गर्भ मोह तज हूरेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो दिन सरहन, ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोविंद। साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना को।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

अनर्थक माया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छुट्टो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गुआई निर्गुण मिलियो बजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी दीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसे अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जाका दान नूट नाही, पली भांत सब सहज समाही, जा की बख्श न मेट कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निर्भव पद पाई है, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

ताकै मन बहुत बिगास जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटया सब मह लिखिया तुरका रहा दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सखी।

तेरा, जियो पिंड सब तिसदा, सब किश है तेरा, मान माने तू धनी तेरा परवासा, बिन साचे अनटेक है सो जान हो काचा रहाऊ, तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए, जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए, चतुराई सियाणपां कितै काम ना आई है,

सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवां लाख भगत आराध्य है जपते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

साहा साहा नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यो पावे त्यो राख राखण हारिया तुझ बिने अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है जिस मन बुठा आप तिस ना वसारी है जो कुछ करे सो आप आपन पाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवां क्या सो वह नाम वसार गाफल गहलिया।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निधान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निधान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रहन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया भरपूर।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

भाउ कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसे सिंगारे नानका इस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सतगुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्स पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि कृपण को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल तृष्ण बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू ढीला ढीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर तू

गंदन वहन सुने उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यों रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजे अरजादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ धंध दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाते बहुर बहुर जनमाते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन से दुख पावे है करी मुहत रंग मान है फिर बहुर बहुर पछतावे है अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख भूलो आक नीम को तू मर जैसा संग बिसियर सिं

सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुरु पूरा कहो नानक भव सागर तरियो पये पनीत शरीरा आसा महला पंजवा दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ मूड मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांधे फिर पाछे पछतानी प्रभ मेरे सब विद आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कह हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसने आवे आसा।

आद संग मिल हर गुण गाय, एहो जन्म पदार्थ जीतारी रहाओ। त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कमन बिद तरिया रे। कुमन केर अगाह गाखरी, गुर शब्दी पार उतरिया रे। खोजत खोजत खोज बिचारे, तत नानक एहो जाना रे। सिमरत नाम निदान निर्मोलक, मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां धुपदे, गुर प्रसाद मेरे मन वसिया। जो मांगो सो पावो रे, नाम रंग एहो मन त्रिपताना। बहुर न कतहु तामो रे, हमरा ठाकुर सब ते उच्चा। रैन दिन सति

वड्डी कौम वस भागह नाही मुहकम फौज हठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना।

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपां भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम।

महा पौजल लंगी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जानत

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्या

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

में अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वास किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे। कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ। मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे। मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे। अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गा।

चरण सुहावे हर संतन पावे रहाव। आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे। एक है आसा दर्स प्यासा आन ना पावे। दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे। आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाव। नाम त्याव हो हृदय बसाव हो इस बिन को नाही। प्रभ सरनी आई है सर्व फल पाई है सगले दुख जाहि। जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आहि। आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ। नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ। राज कहावै हो।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

नाई साध संत मनाई प्रिय पाई गुण गाई पंच नाद तूर बजाई रहाओ कृपा पाई सहजाई दरसाई अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाई गुर ज्ञान मन दृढ़ाई रहसाई नहीं आए सहजाई मन निदान पाई सब

प्रभ त्यावं भ्रम पीत जीत मटावं निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

बिनस ना जाए मर हां गुरते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवां एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख है।

नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रे भवन सूजै आप गवावै, बाणी बूझै सच सुभावै, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मानै सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार, लेख असंख अलेख।

काय जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी

को रोवै दुख कोए, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

लह संदान जिस कायन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा महला पहला गावह गीते चीत अनीते राग सुनाए कहावह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम त्रिपतासे खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार।

नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल साकत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हौमै कौरा रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आज पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

मूख ते सलागे। जो जान राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूतानो फरमाया ले चले पत गवाए जे तिस भावे दे वड़ियाई।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

किया मन मुख पत खोई रहाओ जिन्नी ए को सेविया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वड्याई गुरमुख होए निहालीए।

जो तिस पाया सच्ची सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहण।

तप सार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवट भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्म बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नामे भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे नाम मिले तिसे रजाई रहाउ कल की

गुर शब्द विचार। हर जप पढ़िया होमै मार, हर जपिया पह सच प्यार। नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी। गुर ते शांति उपजै, जिन तृष्णा अग्न बुझाई। गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई।

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझे विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे, दुख कदे ना होई, गुरमुख हम मैं मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, माति उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले, जान नदर करे, किल विक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया, दे नामे लाई, नानक नाम निधान मन वसिया, वडियाई पाई, आसा महला तीजा, सुन मन मन वसाई तू, आपे आए मिले मेरे भाई, अन दिन सच्ची भगत कर, सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू, सुख पाव है मेरे भाई, हम मैं दूजा दूर कर, वड्डी वडियाई रहाउ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विण सतगुर पाई ना जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की, तिन बूझ ना पाए, आपै थै सब रखियोन, किस कहन ना जाई, आपे दे सो पाई है, गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे, सब ना का सोई, मंदा किसनो आखी है, जे दूजा हुई, इको हुक्म वर्तदा, एका सिर कारा, आप पवाली दितियन, अंतर लोभ बकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन, बूझन विचारा, भगत पियो नानो बख्शियन, अंतर भंडारा, ज्ञानिया नो सब सच है, सच सोजी होई, कोय भलाए किसे दे ना भुलनी, सच जानन सोई, कर्म है पंच वर्त दे, पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वास

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होए सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावै चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पथ गुआई जमपुर बद्दे मारिय है बिरता जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनु देवै तिस मिले गुरमती नाम बुझाई नानक सब किस नाम।

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दियां।

दी आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुरते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविद श्रेष्ठ उपाय हुक्मी कार कराएंदा, दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया। ए तेरी सिरकार इक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कडे कूड़ियार। एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए। नदर करी जिस अपनी तिस नो भावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ ना पहुंची है कथ कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाओ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिन्ना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जमे सच नाम वापार जो इत ला है लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावै फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुना बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखी है जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आ भरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हउ मैं मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाई नाही क्या कर कहया जाई आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी फिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साह सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चलतो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पावह ठाव, मीत साजन सुत

जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यों प्यारे अनत ना काहू जाए हर रस जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आगाए अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

मिलै प्यारी तिसकै लागो पाई जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई साची प्रीत ना टुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई जो दुपावै सु भला प्यारी तेरी अमर रजाई नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुपाई सब बिद तुम ही जानते प्यारे किस पह कहो सुनाई तू दाता जिया सबना का तेरा दिता पहर है खाई सुख दुख तेरी आग्या प्यारी दूजी नाही जाई जो तू कराम है सो करी प्यारे अवर किश करन ना जाई दिन रैन सब सुहावने प्यारे जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक हर सरनाई राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया।

लिया जमराज एक ही रू आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए दिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे दिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किश देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए ज्यों जिया कारज कपया न्यन्ये नदर करे जा देखा दूजा कोई नाही एको रव रहिया सब थाई एक वसिया मन माही तत्ते तंच करहू क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे दंप करहो क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सरे वो ता सुख पावहो सर्व निरंतर राव रहिया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यों तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चलाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारु पवजल हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्थे थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा आपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने नाहा भोग नित भोगै।

तै पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया फफै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बै बाजी खेलण लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालण आप लगा पब्बै पालह से फल पावह गुर प्रसादी जिन को भौ पया मनमुख फिरह ना चेतह मूड़े लख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरू पड़या मम्मा अखर विसरया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाणै गुरमुख आखै गुरमुख बूझै गुरमुख एको जाणै रारै राव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाई कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाई तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देव परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोहो कुर्बान किया हाहै होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर नाम समावो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़ आप करे जिन छोड़ी जो किछ करना सो कर रहया करे कराए सब किछ जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंगे काल भया रीरी लल्ली पाप कमाणे पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहया रहाऊ सिदंगाय सिमरह नाही नन्ने

नाही मूड़े, परम भुले तेरा जन्म गया, अनहोंदा ना उतरायो पांदा, अवरा का भार तुद लया, जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े, अंत गया पछता वहगा, एक शब्द तू चीनह नाही, फिर जूनी आ वहगा, तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, अवरा नो ना सखाल बिखिया, पहला फाहा पया पांदे, पिछों दे गल चाटड़िया, ससै संयम गयो मूड़े, एक दान तुद कथाई लया, साई पुत्री जजमान की सा तेरी, एत तान खादै तेरा जन्म गया, मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े, हौ मैं वड्डा रूप पया, अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया, माया का मोहताज भया, ककै काम क्रोध भरम्यो हो मूड़े, ममता लागे तुद हर विसरिया, पढ़ै गुण है तू बहुत पुकार है, विन बूझे तू डूब मुआ, तत्तै तामस जल्यो हो मूड़े, थत्तै थान पृष्ठ होआ, कग्गै घर घर फिरहै तू मूड़े, दद्दै दान ना तुद लया, पप्पै पार न पवही मूड़े, परपंच तू पलच रहया, सच्चै आप खुआयो हो मूड़े, एहो सिर तेरै लेख पया, पब्बै भवजल डुब हो मूड़े, माया विच गलतान पया, गुर प्रसादी एको जानै, एक घड़ी मह पार पया, वावै वारी आईया मूड़े, वास देउ तुद विसरिया, ए वेला ना लह सह मूड़े, फिर तू जम कै वस पया, झज्जै कदे ना झूरह मूड़े, सतगुर का उपदेश सुन तू विखा, सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, न गुरे का है नाम बुरा, तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े, अंतर तेरे निदान पया, गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह, जुगा जुगंतर खाही पया, गग्गै गोविंद चित कर मूड़े, गली किने ना पाया, गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े, पिछले गुनहा सब बख्श लया, हा है हर कथा बूझ तू मूड़े, ता सदा सुख होई, मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै, बिन सतगुर मुक्त ना हुई, हरारै राम चित कर मूड़े, हृदय जिनकै रव रहिया, गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता, निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहिया, तेरा अंत ना जाई लखिया, अकथ ना जाई हर कथिया, नानक जिन को सत

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवण जावण थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सुकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ।

खाहे चूटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक चेत रे मन मर है पवरा कालिया मेरे जीअड़िया परदेसिया कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनो अंदेसिया सच कह नानक चेत रे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाण सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगद अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताही रुनिया सच कह नानक शब्द सच मेल चिरीव सुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर पहला हम घरे साचा सुहिला साचे शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द शिंगारी सच सुवारी सदा रावी रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी औगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावे कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चे शब्द सुभाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जां फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर तीजा।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवी। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंड लागे, गुरमुख सदा संभाले, यूं कह नानक जह मन तू धामदा, तह हर तेरे सदा नाली, सतगुर मिले तावत थमिया, निज कर वसिया।

जो धोनी उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ता सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी वधाई।

साई सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाज है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मोए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचह त्याया।

राम नाम सुनी सिद्ध कारज सब सोहाए राम रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम त्याए राम राम नाम ते

लागा। जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु,

पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, सोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को, दूजा अवर ना कोई, हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो, सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हिरदय क्रोध जलाए दियो, मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो, एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो, तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, अत किरिया कर्म कमाए जियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टकाए जियो, महाजुद जोद बहुकीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो, दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो, जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए दियो, कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो, आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देख, सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कड लेव हो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुकत सुख होई जीवन मरन हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़ ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जै हर वस्तु लड़ी जै जिसकी वसत सो ले जाए जियो मन मुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वसत प्रभ लए स्वामी जन उभरे शब्द कमाए जियो जग मरन न पाया नित आप लकाया मत जम पकड़ ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे हर नामे सीते हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोए दुख मेटे हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बहुड़ मरना होई हर हर नाम अमृत।

जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। घट अंतर

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

चिताए गुर हर मार्ग चाली, मेरा मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली, गुरमुख।

रस भिन्नी, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मेल हर मन मन्नी, हम मूर्ख कार लाइया, नानक हर कमे, गुर अमृत पिन्नी दे होरी, अमृत बुर के राम राजी, जिन्ना गुरबाणी मन पाईया, अमृत शक शके, गुर तुठे हर पाया, चूके तक तके, हर जन हर हर होया, नानक हर इक्के, आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजी, गुर सतगुर सच्चा साहू है, सिख दे हर रासी, तन तन बन जारा बनजे है, गुर साहू सबासी, जन नानक गुर तिन्नी पाया, जिन तुर लिखत ललाट लखासी, सच साहू हमारा तू धनी, सब जगत बन जारा राम राजी, सब भांडे तुदै साजिया।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर टुठा। जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

रे मन तृष्णा ना बुझि मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर तुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देखसा हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेलसा गुर नानक पाया मेरे प्यारे तुर मस्तक लेख सा।

भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणी अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन मान।

तब किस मैं सब किछ पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, साणथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरण तेरी राख कृपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरण तरिय अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हूं मैं बिनसी गांठे, प्रियो सहज सुभाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यो राती जल माछुली त्यो राम रस माते राम राजे। गुरपुरे अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे, जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यों हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

पंथ भणी है, तह साध संग ना डरपी है, कर कीरत गोविंद गुणी है, सगल परास्त दुख हरे, कहो नानक संत गोविंद हर के, मन हर सिउ नेहो करे हो, ऐसी मन प्रीत हरे, जैसी मछली नीर, एक खिन पी ना तीरे, मन ऐसा नेहो करे हो, जैसी चात्रक प्यास, खिन खिन बूंद चवै, बरस सुहावे में हो, हर प्रीत करीजै, इहो मन दीजै, हत लाइए चित।

कहा कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हर सियों की जय नेहा। माने ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय हर प्रीत करीजै मान ना कीजै। इक राती के हब पाहुणिया हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसी तरन पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

गीत की जय। आसा महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराध ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। नाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है। दुख दर्द भ्रम जाय संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पहु भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग विदे। नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचन

पास सेवा लागी है। जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया। मन शांत सहज सुभाऊ बूठा, आनंद मंगल गुण गाया। नानक वखाणे गुर बचन जाने जा।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मत हीन, निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर को लहीन, व्यापत मोह कीच, मल धर्म कर्म अहंग ममता, मरण चीत ना आवे, बनता बनोद आनंद माया, अज्ञान ताल पटावे, खिसे जोबन बदे जरुआ, दिन निहारे संग मीच, बिनवंत ना

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयु बहु परदेसह धायु अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायु राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तरीक उदारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

हल्ला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपौ भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा हीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या
कन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लय उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया, खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई, गणत नाही की आय अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप।

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनग्रहो राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायण, विनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायण, निध सिध चरण गहे तां केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, करतार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापै, हमें हर रस चाखिया।

आयो माथे जिस पास लकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़।

आद कमला ब्रह्म पीत कमला ब्रह्म पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ।

संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श

करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

बहुते जन्म परमिया, तां सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं, सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया, सलोक महला।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लै नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गुआई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना भरिए पाई है सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन

पौड़ी। बिन सतगुर किन ना पायो, बिन सतगुर किन ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

बंदना फिर जोनी पाहे। हो मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए। हो मैं एहो हुक्म है पय किरत फराहे। हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देहे तिस मिलै सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिन कै हिरदै सच वसाया।

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहै बाहरा पूरै रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भगत।

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

होइ बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

सहसाच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

में जो हंता मिर्गाहे शीस नवाया क्या थी जारिदैक सुधे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे तूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै विण सतगुरु।

फिर पाइय होर नानक तग ना टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्या पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइय तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे बत्ते वट तागे अवरा।

कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावहु, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ कतेबा, संजम तुरका पाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे ता सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

पया तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामै रस खाए नानक एवै जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण वे आह पंडो होवै दोस्ती पंडो चलै राह पांड मोआ पांड पालिए पांड होवै बंदान सो क्यों मंदा आखिए है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडै बाज ना कोई नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया फास बंद नहीं पारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है, बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है, डाला स्यों पेड़ा गटकाव है रहाव, बासन मांज चिराव है ऊपर।

मुखों अपरस कहावह है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटंब डुबाव है, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर पेट पुनरप जन्म न आवे आसा।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो।

मरना, पान कपूर सबासक चंदन अंत तहु मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहूं ना उबरना, कहो कबीर इयो रामह जंपो मेट जन्म मरना आसा, फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे

रहाव। बैठ सिंह घर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे, घर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्नि।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। का की मात पिता कहो का को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

नैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपराध।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को।

तारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना।

पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया, मुगद कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागै, किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावै, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोले बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीके। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखे

रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई। देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती। तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई। बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

पहला पूत पशहरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तलैरे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बूझे राम रमत तिस सब किश सूझे बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बिंद तेजन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहाओ बारक ते बिरद भया होना सो होया जा जम आए चोट पकरे तब है काहे रोया जीम न की आस करह जम निहा।

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरो रे।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

तार चरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जै पासना देखै आग, काल पासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखे खबर ना करे दीन के बौरे ता ते जन्म अलेखे रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

कबीर जी होके दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई हासा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआ ला।

बोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

मरै बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल में होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवरे है बीठल पहला काय करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काय करूं। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी। कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यागो सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे कोटी जै ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाऊ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

सतगुरु प्रसाद, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाके, अशली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद।

ताद दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के विसरिया जिन नाम ते भोए पारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोहों लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चले, जहां हों जाऊं तहें जाई। सो झूठा जो झूठे लागे,

हो गई। वेखो को व्योपाय बलिहारी गुरे अपने, सद बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसै, सहजे रह समाय रहाउ जा पहु पाए अपना। बैराग उपजै मन आय, बैरागे ते हर पाइए हर स्यों रह समाय। से मुकत जे मन जिन है फिर धात न लागे आय, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाए। नानक गुर ते गुर होया,

जिन कह कपट वस्सै बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा जिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवे साच बुझाए बिन पारस है पूज ना हो वही बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे।

दास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग

मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिन दरगहा हर हर दे वडियाई, धन पन सबास कह प्रभ जन को, जन नानक मेन लय गल लाई, गुजरी महला चौथा, गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवोह दान हर प्राण जिवाया, हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई, मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ, जा हर प्रभ पावै ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, बड़ भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया, सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया, आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामै हर सिउ चित लावे। अमृत बचन

नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई। बिचे गृहस्थ उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई। तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ भाई। जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहे जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम। जां आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय। ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभा

बाद तिरियाचार करह खट कर्मा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरै हूं मैं बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव शास्त्र वेद सिमरत सब सुदे सब एका बात पुकारी बिन गुर मुक्त ना को पावे मन वेखो कर बिचारी अठ सठ मज्जन कर इशनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर कूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन

कूट न आवे, हलत पलत कह संगे, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एहो मन हर रंग रंगी, गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किल विख नासह, पितरी होए उदारू, सो हर हर तुम सद ही जापहु, जा का अंत न पारू, पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुम कहो हर हर, सदा भजो जगदीश रहाउ, सतगुर तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबह न व्यापै चिंता, पवर तुम्हारा इहो मन होवो, हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लप

ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निदान जिन जन जपियो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाउ जो किछु कियो सोई पल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

कोली उच्चा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथ्या लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ तिन्ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को तनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवां है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद बुझिए बकन कथन रहता रहाउ आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहियो है देखियो जतर कथा गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयु जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम।

आराधु प्यारू निमखना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाइए त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहे ओही अरे कह संगे देख मोहयो मन लीला रहाऊ जिस सिमरत मन होत आनंदा।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थूरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाले पूरा ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे हो तुमरा तुरा रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो बिन से ओ सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही।

कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सलाही रहाऊ। सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक भई करते की और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस हर भोर।

पंजवा आप जस मिट हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्या

व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आज्ञा टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर सरण ताकी गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवां घर।

प्रसादी हर प्रभ जाचे, ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते भेख करह पिठिया को, एते उदर भरन कै ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी।

जिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आई तू वड पुरख अगम सरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरन भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सह

तू मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं तै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै।

अंते जम पहो भागै रहाउ। आप न चाहे सो भगत कहिऐ, अपना प्यार आप लाई, आपे गावै आप सुनावै। इस

मनमुख भगत ना होई सुर नर विरत पक करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत् ज्ञानी जिन कौ हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन।

अथ कथा नित नियारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे।

मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी इहो परपंच खेल किया सब करत हर करत सब कल धारी हर एको सूत वरत जोगे अंतर सूत खिंच एकंकारी रसन रसन रस गाव है हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर भावै, सतगुर कै भाणै वडियाई पावै, नानक आप छोड़ गुर माहे समावै। महला तीजा, गुर की सिख को विरला लेवै, नानक जिसे आप वडियाई देवै। पौड़ी, माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी। अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छट बेकारी। हर हर नाम त्याई है हर हर निस्तारी। सलोक, कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन तो मैं गल हो रहा, निकसिया क्यों कर जाय। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा।

लागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जां होए खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मुई कंतना लायो पावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाए किते ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की,

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है इना ऊपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले

पाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। इहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर भाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाई।

पिए रस भोगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी। जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते

ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुखे अमृत चाखिया से जान त्रिपताता। सलोक महला तीजा वाह वाह तिसनो आखिया जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिया।

का नाम। जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सुखाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे। वाह वाह भावे नानक। वाह वाह जो

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास। नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे प्रगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई। तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। जी जंत सब तेरिया तू रहया समाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मुआ आस्था मरे ना जाए। नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा आस्था मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए। नानक निश्चल को नहीं

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना

मत वन्य मित्र असा डड़े से हाँ टुने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवै साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खो

जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभूर।

सगल अपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया पाइन सब निदान साहिब तुठिया सलोक महला पंजवा लगम लभन हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना।

तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याई

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखै आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरा कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरा रंग रत्ती से जोन ना जोवना अंत

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै है हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते सलोक महला पंजवा राम जपो हो वडभागी हो जल थल पूर्ण सोए नानक नाम त्याय बिघन ना लागै कोई महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते।

दौलत बन महिया अजहू ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कि यो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

हम हर की सेवा, गुजरी घर पहला, मलै न लाछै पार मलु, परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेख्यो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूझिए, रमैया आकुल री बाई, रहाउ ज्यो अकाशै पंखी अलो, खोज निरख्यो ना जाई, ज्यो जा

पानी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरी अठसठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी तन बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

बेसवा जून वल वल अवतर अंत काल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता मह जे मर सूकर जोन वल वल अवतर अंत काल जो मंदर सिमर ऐसी चिंता मह जे मर प्रेत जोन वल वल अवतर है।

प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत आद भाव रतन परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सोकृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह केव

ठाकुर लिव लागी। जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहयो गुरमोहन, हम बिसम पई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचत कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी, मोहे तुम सर अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर, कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, यह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर पाई, ओह सुंदर हर ढुल मिली। एको प्रियो सखियां सब प्रिय की, जो भावे पेर सा भली। नानक गरीब क्या करे बेचारा, हर भावे तित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन, मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलूलै राती, हर प्रेम पीनी चोली है। रहाउ हों फिरों दीवानी, आवल बावल तिस कारण हर ढोली है। कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिस की गुल गोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोली है।

0: हर जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाव लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हम तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ, जिनका हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों गुरा बहुबाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै शुक्ति, छका एक, देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाइय, प्रभ होए कृपाल कमल पर गासी, सदा सदा हर त्याय रहाओ, अंतर एको बाहर एको, सब मह एक समाइय, काटे अव घट रव्या सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाइय, उस्तत करह सेवक मुन केते, तेरा अंत न कतहु पाइय, सुख दाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाइय, देव गंधारी,
1: माई होनहार सो होइय,
0: राच रहियो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोइय रहाओ, कह फूल है आनंद बिख सोग, कब हसनो कब रोइय, कब हूं मैल भरे अभमानी, कब साधु संग धोइय, कोई न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइय, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जेहे प्रसाद सुख सोइय, देव गंधारी, माई सुनत सोच पै डर

अमृत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहूं गावत सुनत जपत उधारै वर्ण अवर्ण सबहूं रहाउ जहते उपजियो तहीं समायो।

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख।

सेवा दर्शन दुख अवतारेउ नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारेउ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारेउ माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारेउ देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया भरम अंधेरा लही।

नाम रसमाते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रव दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

हा रहाऊ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी।

प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावह मर जन्मह मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रव राख हो राखन हारा करन करा

दुख कनेरा सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अन ग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ लादेव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताकू पार ब्रह्म।

नरक रोग नहीं होवत जान संग, नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कब हूं चलना, विकल भयो संग मायो रहाओ, कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो, फिरत फिरत बहुत श्रम पायो।

लाग हर चरनी लागो तिस प्रभे अंचल गहिय आंच न लागे अग्न सागर ते सरन स्वामी की अहिय कोट पराद महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सहिय परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सरन हिय देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी।

जाको उपजी छोड़ न कतुहू जाता रहाउ बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मजन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उदार।

काल दयाल दुख भजन मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब चितवो तब तुहारी उन समाहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवां।

गुरुचर तौत्तरी सकल दुराख्य देव गंधारी पंचवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाऊ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

तरन परियो संत हारिए, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारी। देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पीतर, तास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो।

ज्ञान रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

छुटकी रे मन छुटकी रे काकत संग ना छुटकी रे रहाउ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा ने।

साध पगा हे तरुल तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर पर पंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै, स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो, कहो ना कान धरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जां ते काज सरै, देव गंधारी महला नावा, सब किस जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव, तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार, आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार, देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं

पुयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ तो मैं हर हर करिया तौ तो सुख सहजरिया रहाउ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहु बंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाउ तिन मह राउ रंक कौ करई राउ रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध की।

दड़िए गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आसा ममता पूरिया मेरी जिंदड़िए हर मिलिया भुख सब जाए राम तुर मस्तक हर

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर देख है राम। तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर रव रहिया मेरी जिंदड़िए पार ब्रह्म प्रभ दाता राम ताका अंत ना।

जातियो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधातै तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जां संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अराधे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

जंपै जिन हर हर संजोग मलाया। बिहागड़ा महला पंजवां कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम। अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना। समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा।

चरण लग है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंग है, हर भगत पाई है प्रभ त्याई है, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भग है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बड़ भागिया, सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी,

मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो शरण आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक।

तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये, दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन हुना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुणग पालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घण विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

कोट अपराध भरे पी तेरे तेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कलेश भंजना सरन तेरी रख ले हो मेरी सर्ब मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो कर के चेरे तू समरथ सदा

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक शरण सम

कल्याण मैं प्रगट भय सीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईऐ, हों हों करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो

चार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सैसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंधा

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ीऐ। हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनों त्याई दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ीऐ। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ीऐ। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ीऐ। हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठै जगत तरिया सब लोड़ीऐ। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का स्वाओ ना पाया। नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाऊ जिन हर का नाउ वसारिया। नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाई प्यारिया पौड़ी। हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए। हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए। हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए। हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

कहौं बलिहारै जाऊं महला तीजा। नानक तरवर एक फल दुए पंखेरू आहे। आवत जातमा दी सही ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण। हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राह। आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै। आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा। आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै। आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुआ हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध। ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्तर सो तंद। जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्द उर तार अंतर प्रीतम वसिया तुरक।

करता आप परपंच करीजै, आप परविरत आप निर्विरति, आपे अकाथक थीजै, आपे पुन सब आप कराई, आप लिप्त वर्तीजै, आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेका अंदर हो जोर छाड तू, पहो कर झल गवाए, गुर कै भै कीते निस्तरे, भै विच निरभउ पाए, मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम करो।

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, हादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पीलाए जमकाल, इत मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार, ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार, काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कटह बेकार। पौड़ी, आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आई पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरना होए पौड़ी। जिसदा कीता सब किश होए तिसनू परवाह नाही किसे केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कबे तेरी। जे तुदनू सलाहे सो सब किश पावे जिसनू किरपा निरंजन केरी। सोई साहु सच्चा बनजारा जिन वखर लद्या हर नाम धन तेरी।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोई नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाइया कितै ना लया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेओ है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया आपे मिलिया आय महला तीजा।

सो चेतन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथै कमावै सो मिलै अग्गै पाए जाए महला तीजा।

लाए ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै गियाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना उस्तत बरन ना सकी है।

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहुरावन गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो प्यो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहया समाय नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौं क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल ला।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्द समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी पिर कारण, जे हर

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै, वड भागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा, बढ़ा।

अंतर भूख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इह कापड़ तन ना सखावे, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, तब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमै लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावह, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड

कबहु न जावे। राजू ता तेरा सदा निहचल एहो कबहु न जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा हुआ एक तेरे नावे। जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारी सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गवाया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे पर पूरे राम फिर रव रहे पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा हर नाम त्याए मन वसाए, बूझै गुर बीचारा मनमुख खेती वणज कर थाके, कृष्णा भुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाए, हर व्यापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम, गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सच बैरागो, साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना, शब्दे हौ मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै, गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन, हर रावै मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वडियाई राम, गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम, हुक्म मलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई, गुर ते पाई सच सवार नहारा, पौ भजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मलाई, कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया समाई, वडहंस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जी।

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मन मुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मन मुख संता नाल वैर कर,

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रुबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हूं मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे भंडारा, गुरमुख होए सोई बूजै, सच सवारन हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर कहना किछु ना जाई, नानक बिन नावै परम भलाया,

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजै

हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हर आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा, हौ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुरमेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम त्याया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

रह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

0: मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर झूरे।
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शन।

सतगुर पुरख ना पाया, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम, हर हर सतगुर करह भगती, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे हैं, सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बात पूछे हैं, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लग हैं नित करहे बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम, जप हर हर नाम, लथ अड़े जग तापा राम, हर हर नाम जिन्नी अराध्या, तिनके दुख पाप नवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा, अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन त्याया, इन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम, हर दयाल शरणाया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया, सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम। वडहंस महला चौथा, घोड़िया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी, राम उपाइया राम, धन मानस जन्म पुन पाइया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देहे सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया, एहे देहे सो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया, वडभागी पाई नाम सुखाई, जन नानक राम उपाइया, देह पावो जीन बुझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम, बिखम भोए अंगा अंत तरंगा, गुरमुख पार लंघाए, हर बोहत चढ़ वड भागी लंघै, गुर खेवट शब्द तराए, अन दिन हर रंग हर गुण गावे, हर रंगी हर रंगा, जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा, कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम, तन प्रेम हर हर लाए चाबक, मन जिने गुरमुख जीतिया, अकड़ो कड़ावे शब्द पावे, अपेओ हर रस पीतिया, सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी, हर रंग तुरी चढ़ाया, महामार्ग पंथ बिखड़ा, जन नानक पार लंघाया,
घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

इहो तन मन दित्तड़ा वारो वारा राम। तन मन दित्ता पवजल जित्ता चूकी कान जमाणी। अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवन जानी। सो कर लता सहज समता हर का नाम अधारा। कहो ना

0: तुद सलाही
1: गुणे अवगण मेरा किस ना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई

जो बिकारु ऊढ़ड़ै नाम वसारिया ढूढ़ड़ै क्या तिस चारू गुण छोड़ बिख लद्दिया अवगुण कावण जारू सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सच्चे करतारू नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मेलन हारू रूप न जाने सोहनिया हुक्म बद्दी सिर कारू बालक बिरद न जाननी तोड़न हेत प्यारू नौ दर ठाके हुक्म सच्चे फंस गया गैनारी सा धन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंग नड़े बारी तुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारी रोब हो कंत मेहली हो सच्चे के गुण सारी जल मल जानी नवा लिया कपड़ पट अंबारी वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारी जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारी जीवत मरै सो जानिए फिर सचड़ै हेत प्यारी तुसी रोव हो रोवण आई हो झूठ मुठी संसारी हो मुठड़ी धंदै धावणिया फिर छोटियाड़ी विदनकारी घर घर कंत महेलिया रूढ़ै हेत प्यारी मैं फिर सच सलाहना हौ रहस्यड़ी नाम पतारी गुर मिलिया वेस पलटिया सा धन सच सिंगारू आवो हो मिलहो सहेली हो सिमरहो सिरजनहारू बैयर नाम सुहागनी सच सवारनहारू गावहो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म बीचारू वड़हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया तो साहिब कुदरत जानोआ सचड़ा दूर ना भाली है घट घट शब्द पछाणोआ सच शब्द पछाण हो दूर ना जान हो जिन एह रचना राची नाम त्याए तां सुख पाए बिन नावे पिड़ काची जिन थापी बिद जाने सोई क्या को कह वखाणु जिन जग थाप बताया जालू सो साहिब परवाणु बाबा आया है उठ चलना अद पंदै है संसारूआ सिर सिर सचड़ै लिखिया दुख सुख पुरब विचारूआ दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ है जी नाले जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना भाले आप नरालम धंदै बाधी कर हुक्म छडावण हारू अज कल करदिया काल व्यापै दूजे पाए बेकारू जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंध गबारूआ ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारूआ।

हारेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रोवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी है।

प्रेम समाय जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सा तन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह फिर है विछुनिया, अंधी ना जाने फिर है नाले, बढ़ांस महला तीजा, गुरु वह फिर है विछुनिया, मैं फिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेव है नाम संभाले, सदा नाम संभाले सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, शब्दे काल मार सच उरतार, फिर आवन जान ना होया, सच्चा साहिब सच्ची नाही, वेखै नदर निहाले,

पौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना दिया।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवे ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्ने सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हूं मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संतोह राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेश।

ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिखरा।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भउ छोड़िया मन हठ कम ना आवै रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

ना हो गई। अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय। मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाए। सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय। घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय। पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गुआय। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सियों निबलाए पौड़ी। तित जाए बहु सत संगति, जिते हर का हर नाम बिलोई। सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोई। नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई। तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविए शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे।

नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी। हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन किंदिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है तां लाज मराई है। जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचो भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने ते हो होवै ता सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

आए मनमुख घर हुंदी वथ ना जाननी अंधे भौंक मुहे बिललाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे है अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिन हउ मैं दुबदा भन्नी।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है।

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राख्या अमृत सच्चा नाव भोजन चाख्या तिपत रहे आघाए मिटी पपाख्या सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाख्या जन नानक भय निहाल प्रभ की पाख्या श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: है, मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके,
0: मन होए निकेंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहिया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हथ कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन सोठ महला पहला चौतुके

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोठ महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा, सगल भवन की

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पाव है छूट है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै बिरले सूचाचारी तंतै को परम तंत मलाया।

हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे घर अमृत।

कियो, सर अफसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो हो काही जियो। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो हो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों भावै त्यों राखो हो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम विसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अभागा रहाउ। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाई है निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

कहाव जागत रहे तिनी प्रभ पाया शब्दे हम मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धाम दा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम।

0: आवह गुर कै शब्द विचारी आपे मेल लए प्रभ साच है साच रखिया उर धारी नानक नाम हूँ गत मत पाई एहा रास हमारी।
1: तुरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया नाव हर धन सच सोए खुट नाम धन कदे न खुटै नाही किने ना कीमत होए नाम धन मुख उजले होए हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा दरगाह मिले सजाई रहाओ इस देही अंदर पंच चोर वसे है काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूट है मनमुख नहीं बूझ है।

कर कर विगुटे केहो चले ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरठ महला तीजा दासन दास होवै ता हर पाई विचों आप गवाई भगता का कार्ज हर आनंद है अन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासा नू कृपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमति भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यो गुर सेव्या चित

सुखदाता, इसका अंत न पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रता एक रंगी, शब्द सवारन हारा। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर काटे अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से भाई। गुर कै शब्द परगास।

हाव हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल हुआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर सियों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेख मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखे जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। सदा लिब है तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे। ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया। हरनाक्ष नख है बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावे। हर जियो लय उबारी, आपस कहो बहु भला कर जान है। मन मुख मत ना कर।

पछताए। सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चल पाई। विछड़ चोटा खावै, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई।

जै सो आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई बिन भागा क्या पाईए। एक नदर कर वेख सब ऊपर जेहा भाव तेहा फल पाईए। नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाईए। सोठ महला तीजा चौथुके सच्ची भगत।

प्रणाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रव्या सब ठाई हृदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संजम सब गुरते होवे हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दु तुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाई पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाउ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

वावह हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेख घर अंदर सच पाए सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ गिल बिख काटन हारा शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दात दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाई।

आपे पत्तल पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर खेवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्शमला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया।

आप लखावे सोए, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड अवर ना कोई, सब घट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए, नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापै, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेख प्रभ आपै, आपे वण तिण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापै, जप मन हर हर नाम रस त्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै रहाओ, आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप तरै प्रभ आपै, आपे जाल बताएं दा प्यारा, सब जग मछली हर आपै,

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया सोठ महला चौथा

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिलते आए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराईंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है।

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हृदय मिलिया शांत मरारी रहाउ तू हृदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया।

निरपौ भय गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है ती होम नहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रास्ते, नानक को गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवां सुखिए को पेख है सब सुखिया,

रहाउ। कोट पराग मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही। बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोठ महला पंजवा कर पहला, जाके हृदय वसया तू करते, ताकि तै आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी। जैसी तुम लिख पाई, सेवक कौ तुम सेवा दीनी। दर्शन देख अघाई, सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने। जा को तुदे आप बुझाई, गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना। प्रगट भय सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, तां को मन ते बिसर ना जाई। सोठ महला पंजवा, सगल समग्री।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहो कृपा कृपाला साध

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हृदय भय मगन चर नारा सूठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायु मानन मह अबमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्ता वै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक, हम इह हवाला। राख संतन कै पाछै।

अब कहां करे तू, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रत्ते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

रख मातु असंख खते कर फेरे नानक की प्रपाहे बिनंती काट हो अवगुण मेरे सोठ महला पंजवा गुण गाव हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हऊ मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोरठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहे सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर भरम चकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

झूठ निंदा इनते आप छडावहु एहे पीतर ते इनको डारहु आपन निट बलावहु अपनी बिद आप जनावहु।

अनंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

राम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण बसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुरपूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाउ आनंद बिनोद मंगल गुण गावहु गुरु नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिया भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोई करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याय भाई मन तन शीतल होए सोरठ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारु नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारु सोठ महला पंजवा मेरा सत

आख्या पूरन पई वडाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरे पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाओ अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारू नह पति आया उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस तरिया, उठत बैठत हर हर त्याईय, आनंदिन सो कृत करिय राहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड़ पा

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन।